0: Welcome to Adelaide, where cultures meet, where the unique stories within us all have a place and a voice. Welcome to Radio Adelaide.
1: Selamat datang ke Adelaide. Di sini budaya bertemu, di sini suara bagi ceritamu. Selamat datang ke Radio Adelaide.
2: जिंदगी के हर पहलू में एक सुर है, एक ताल है। इस ताल के बिना हम खुद भी जिंदा न बचेंगे।